0: Radio Sarang 107.8 FM.
1: भाइयों और बहनों, आज इधर लिंगुना पुण्य के मन में बहुत धूमधाम से होने वाला है

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत थी जन्नत है।